दसको खरिद दर 9 रुपियाँ 45 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 49 पैसा। चाइनिज युआन 1 को खरिद दर 22 रुपियाँ 44 पैसा, बिक्री दर 22 रुपियाँ 53 पैसा। साउदी अरेबियन रियाल 1 को खरिद दर 40 रुपियाँ 57 पैसा, बिक्री दर 40 रुपियाँ 73 पैसा। कटारी रियाल 1 को खरिद दर 41 रुपियाँ 79 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 96 पैसा। थाई भाट 1 को खरिद दर 4 रुपियाँ 57 पैसा, बिक्री दर 4 रुपियाँ 59 पैसा। यूएई डिरहम 1 को खरिद दर 41 रुपियाँ 48 पैसा, बिक्री दर 41 रुपियाँ 64 पैसा। मलेसियन रिंगित 1 को खरिद दर 37 रुपियाँ 34 पैसा, बिक्री दर 37 रुपियाँ 49 पैसा। साउथ कोरियन वान 100 को खरिद दर 9 रुपियाँ 84 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 88 पैसा। स्विडिस क्रोनर 1 को खरिद दर 15 रुपियाँ 70 पैसा, बिक्री दर 15 रुपियाँ 76 पैसा। डेनिस क्रोनर 1 को खरिद दर 23 रुपियाँ 25 पैसा, बिक्री दर 23 रुपियाँ 34 पैसा। हङकङ डलर 1 को खरिद दर 19 रुपियाँ 42 पैसा, बिक्री दर 19 रुपियाँ 50 पैसा। कुवैती डिनार 1 को खरिद दर 494 रुपियाँ 77 पैसा, बिक्री दर 496 रुपियाँ 72 पैसा। बारेन डिनार 1 को खरिद दर 404 रुपियाँ 10 पैसा, बिक्री दर 405 रुपियाँ 69 पैसा। र अन्तमा ओमानी रियाल 1 को खरिद दर 395 रुपियाँ 70 पैसा, बिक्री दर 397 रुपियाँ 26 पैसा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर। अब हामी गीत सुन्छौँ अल्मोडा राणा उप्रेती र अप्सरा घिमिरेको स्वरमा, तिमी जस्तै हो।